0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, और मैं हूं गगन आपके साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में एक खास हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खास बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। खास बात यह कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चार मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है समाचार माध्यम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इसी संबंध में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं, श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनका 2011 से इस पद पर वो आसीन है, और अनुभव देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ आज हमें सीखने को समझने को मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो मास कॉम के स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका, बहुत बहुत नमस्कार।
5: सर, मेरी जो मुलाकात है ये आपसे सेकेंड मुलाकात है, और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और खुशी इस बात से हो रही है कि तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं आपके जीवन में, और जो आपका अनुभव है उस अनुभव को हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन पत्रकारिता से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ये जो सफर की शुरुआत रही, कैसे रही? अमूमन होता क्या है कि लोग शौकिया बतौर आ जाते हैं या दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे मीडिया क्षेत्र में जाना है, पत्रकार बनना है, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज।
6: गगन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं जानता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि लोग इस तरीके से अपने बारे में कहें और विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों को प्रसारित करें। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरे को पत्रकारिता का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि पत्रकार प्रेस परिषद एक हुआ करती थी
5: जी,
6: तो पिताजी के माध्यम से मैं कभी कभार उस परिषद में जाता था। ताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उन सब चीज़ों में जब मैं देखता था तो मेरा कभी मन करता था कि मैं भी पत्रकार बनूं, और मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक उपलब्धि हासिल हो। उस समय मुझे लेखन का शौक था, तो मैं गजल, कविता, कुछ कहानियाँ, इस तरीके की उस समय की चीज़ें थी तो मैं लिखा करता था और बड़ी सराही जाती थी। कई बार कई समाचार पत्रों ने उसको
5: प्रकाशित भी किया।
6: एक पत्रकार थी बहुत पहले, उसका नाम था पांचजन्य, और जो अभी भी है।
5: जी है, जी है।
6: पांचजन्य में भी मैंने काफी लिखा, बड़ी अच्छी उसकी कमेंट्स आते थे। उसके बाद कई ऐसी पत्रिकाएं रही, एक सरिता चला करती थी
5: पत्रिका, जी जी जी,
6: तो उसमें भी एक आपका कोना करके एक वो था, स्तंभ था, उसमें लिखा।
5: तो ये कह सकते हैं कि एक बीजारोपण उस समय से हो गया आपके जीवन में।
6: बिल्कुल।
5: उसके बाद कब लगा कि मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, मुझे इस क्षेत्र में ही काम करना है?
6: बिल्कुल गगन, ये बात बहुत अच्छी थी कि उस समय जहाँ लोग अपने जीवन यापन के लिए, हम बहुत सारी चीजों को करते थे और जीवन यापन की में रोजी रोटी की तलाश ये सब होता रहता था, और उसी बीच मुझे कहीं और क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला। कई क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, और उसके बाद मेरा ये पत्रकारिता का जो मोह था वो मुझे ले आया।
5: जी, इस मोह से मुझे एक बात याद आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रोक कर आपसे वो पूछ लूं।
6: जी।
5: क्योंकि आज के समय में जब हम पत्रकार या पत्रकारिता को देखते हैं और फिर एक समय के बाद हम सुनते हैं उन्हीं लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी श्रोता से, या किसी पाठकगण से, या किसी दर्शक से, कि मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग हो गया है, क्या मैं अगर कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत चीजें बदली है सर
6: जी।
5: तो क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया है पत्रकारों की सोच में, पत्रकारिता में?
6: बिल्कुल सही बात है गगन, ये मोह भंग होना या मोह भंग जिसे आप कह रहे हैं उसकी संज्ञा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोह भंग हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो पत्रकारिता है
5: वास्तव
6: वो एक पूजा है।
5: बहुत सही कहा।
6: और पत्रकारिता एक ऐसी पूजा है जहां से आपका मोह भंग कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो हमारे वेद शास्त्रों में पत्रकारों के बारे में जो कहा गया है,
5: नारद जी के बारे
6: में, वो नारद जी के बारे में
5: जी जी जी,
6: नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे।
5: बहुत खूब, बहुत खूब।
6: और नारद जी को अगर कहें कि उनका मोह भंग हो गया,
5: हाँ।
6: तो जहां भगवान विष्णु स्वयं उन्हें पत्रकारिता की प्रेरणा देते रहे या स्वयं वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखें, तो मोह भंग कैसे हो सकता है?
5: क्या बात,
6: सीधी भगवान विष्णु की कृपा होती है पत्रकार के ऊपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मेरा अपना मानना है और कई बार मैंने इस विश्वास के साथ मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ।
5: बहुत,
6: तो मोह भंग तो नहीं कह सकते।
5: अरे वाह, आपकी बातों में मुझे बहुत एक सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं समाज में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, और धरातल पर कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और होता है, कागज कलम कुछ पर कुछ और होता है, जबकि हम सच्चाई को देख रहे होते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा अनुभवी आदमी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा और आपसे उन बातों को जरूर जानना चाहेंगे जो आपने सारी चीजें देखी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सो लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप सीईओ हैं कुलदीप शर्मा जी, आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या कुछ बात आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-4060-2055 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं। आज जिस विषय पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये परिचय सामने आता है तो परिचय कि कोई व्यक्ति मोहताज नहीं रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं पत्रकारिता के बारे में, समाचार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पत्रकारिता के बारे में बात छेड़ी थी, जो कि बात अधूरी रह गई है सर। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात निकलकर यही सामने आती है कि किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे कि पत्रकारिता है क्या।
2: देखो गगन, पत्रकारिता एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, एक बृहद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नारद जी और विष्णु जी, नारद जी द्योतक है पत्रकारिता के, और विष्णु जी की साक्षात कृपा उनके ऊपर रहती है, ऐसे ही हर पत्रकार जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो संचार माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, स्तंभ की कोई परिभाषा नहीं होती। स्तंभ स्तंभ है और उसकी मेरी औकात नहीं कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं।
1: जी जी,
2: मैं अगर
1: जी
2: मैं हूं तो
1: नहीं, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी है और सटीक जवाब आप हमें दे रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जो मेरा सवाल करने का उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट अगर समझें, एक साधारण व्यक्ति समझे कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है, या जो पुराने लोग हैं वो देखते थे कि पत्रकारिता पहले समय में ऐसी होती थी और आज के समय में, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो बिल्कुल पत्रकारिता बदल चुकी है, तो ये इस तरीके से मेरा सवाल करने का मकसद था सर।
2: कोई बात जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन एक मैं वो परिभाषा वाली बात कर रहा था, और इसमें जो आपका और जो आज के समय पत्रकारिता का जो माध्यम है या उसको परिभाषित करने की बात है, परिभाषित आज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो एक जगह से दूसरी जगह के सूचना तंत्र को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और उसके जो बीच के जो कार्य हैं वो पत्रकारिता होती है। आज के समय में लोग, क्योंकि आपका जो कहना है या जो पूछना है
1: जी,
2: वो यही है कि बदल चुकी है,
1: बदल चुकी है,
2: बदला कुछ नहीं है। पहले भी पत्रकारिता ऐसे ही थी, आज भी पत्रकारिता ऐसी है, जो स्वच्छ अपने और दूसरों के विचार हैं
1: जी,
2: उन विचारों को रेखांकित करके
1: जी
2: या शाब्दिक करके
1: जी,
2: उन शब्दों को दूसरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम जो है पत्रकारिता है। आज के समय में पत्रकारिता को हम मानते हैं टीवी चैनल, अखबार, वेब मीडिया
1: जी,
2: समाचार चैनल, ये जो है, या रेडियो चैनल, जिनके माध्यम से सूचनाएं
1: पहुंचती
2: हैं और पहुंचती हैं, आदान प्रदान जो होता है यही है। और अगर इसके अलावा आप और इसको खुल के कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप
1: मेरा मतलब ये था कि सर, ये अगर हम चीजें फिल्मों में भी देखें कि वो चीजें हमें मिलती हैं पुराने समय की फिल्मों में, एक कलम का सिपाही सच उसने देखा और सच लिखने के लिए वो तैयार है, और आज के समय में अगर कुछ उसने सच देखा तो या तो उसकी टीम मैनेजमेंट या कुछ और उसको कुछ और लिखने के लिए शायद कहा जाए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। या टीवी चैनल्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भी खुद एक मीडिया का ही पार्ट हूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितना परिवर्तन आया है, क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं, डिबेट शो हो रहे होते हैं, या दूरदर्शन की बात करें, जो दूरदर्शन बहुत तौर तरीके से डिबेट होती हैं, वहाँ चीखना चिल्लाना नहीं होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कप प्लेट नहीं तोड़ी जाती हैं, या कुछ गाली गलौज नहीं होता है, तो दूरदर्शन में तो हमने बहुत सादगी के साथ डिबेट्स देखी हैं, और दूसरे प्राइवेट चैनल्स में जब हम देखते हैं तो क्या ये टी

0: मर्यादित होगा, क्योंकि वो उस सरकार के अधीन होता है, उसका सब कुछ सरकार के अधीन होता है। और जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन हाउस है या जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, तो वो अपनी टीआरपी, क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो उनकी कोई खेती तो होती नहीं।
1: जी जी,
0: वही उनकी कमाई है, ये वही उनका साधन है, जो फाइनेंशियल जो भी वहां से ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके अपने भी माध्यम है।
1: जी जी,
0: लेकिन सच मायने में अगर पत्रकारिता को कहेंगे तो ये पत्रकारिता नहीं कह सकते।
1: क्या बात है, यही सर मैं चीजों को जानना या समझना चाह रहा था। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता हैं, या यूं कहूं कि जो एक साधारण व्यक्ति श्रोता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ उन विद्यार्थियों को भी रखना चाहूंगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो कुछ करियर की बातें हैं वो मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, वाकई ये जो वार्तालाप हो रहा है बहुत अच्छी चर्चा हो रही है पत्रकारिता के बारे में, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में, और पुराने समय में जो सर ने देखा, जो आज के समय में वो देख रहे हैं, इसका एक अंतर हम सर से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के सीईओ हैं। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इसके तहत। और आज हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता के संबंध में बात कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्कॉम के स्टूडेंट हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, विद्यार्थी इस मास्कॉम के बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आकर देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं, जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप शर्मा जी, लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के आप CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मैं सीधे लफ्जों में यही जानना चाहता हूँ, बातों को हम नहीं घुमाते, हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार को किन किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसको आगे लेकर जाना चाहिए, वो क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए।
1: गगन, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और खास तौर से हमारे जो मास्कॉम के विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक खाली पत्रकार होना ही नहीं होता, पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र है, और उस बृहद क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। एक तो व्यक्तित्व तो उसका ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई दाग ना हो और ना ही कोई दाग लगे। निर्भीकता इतनी होनी चाहिए कि कोई दाग लगाने की कोशिश भी करे तो वो 100 बार सोचे, किसी भी कारण से अपने आप को कमजोर ना महसूस हो, और अपनी लेखनी की ताकत, शब्दों की मर्यादा, भाषा का नियंत्रण ये बहुत आवश्यक होता है। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इन सब विशेषताओं को बना के रखें और हमेशा पत्रकारिता के क्षेत्र को बढ़ा के रखें, कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है
0: जी,
1: जहां एक छोटी सी बात से लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है।
0: सही का
1: जी, गोली से एक मर सकता है, दो मर सकते हैं, चार मर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से 100, 50, 200 लोग मर सकते हैं, लेकिन कलम बहुत लोगों को जिंदा कर सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है। कलम का सही इस्तेमाल करें, लेखनी का, अपनी लेखनी के ऊपर विश्वास रखें, अपनी भाषा का नियंत्रण रखें, अपने आप में नियंत्रित रहें, और इन्हीं सभी अच्छी विशेषताओं के साथ पत्रकारिता करें। मेरा सभी को यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव है।
0: बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी, जो कि एक बात का निचोड़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन बातों को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम बोलेगा, आपकी एक अपनी पहचान होगी, और इस तरीके से आप जिंदगी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। तो सर, कुछ और अगर आपको लगता है कि गगन आपकी तरफ से ये बात छूट रही थी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके अपनी मन की बात तो आप भी अपने मन की बात रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो अपने मन की बात कम समय में ध्यान रखते हुए आपसे जान ही ली है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना एक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अपने विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से एक तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, और सभी अपने मास्कॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं सभी श्रोताओं को जो मन में ये लेके बैठे हों
0: जी
1: कभी, कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा मोह भंग हो गया,
0: जी
1: ऐसा क्षेत्र नहीं है, पत्रकारिता एक बहुत अच्छा बृहद क्षेत्र है, और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और स्तंभ हमेशा मजबूत होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और वो हमेशा मजबूती के साथ अपने लोकतंत्र को या छत को या जिस को भी वो अपने कंधे पे रख के खड़ा रहता है। तो कृपया मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान दें, सम्मान दें, क्योंकि वो आपका ऐसा माध्यम है कि आपकी बात सुनता है और जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाता है।
2: बहुत गुण, बहुत गुण।
1: पत्रकारिता क्षेत्र के सभी साथियों को, बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी साथियों को यही कहूँगा कि इस पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है मजबूती के साथ हमेशा बनाए रखें और इसका मान सम्मान मर्यादा सभी का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक छोटा सा वादा जरूर लूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमारे स्टूडियो आएगा ताकि और अच्छी बातें हो सकें आपके साथ।
1: मुझे जब भी शारदा FM मुझे बुलाएंगे और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा और आपके पास जो भी आप मेरे से कहेंगे मैं करूंगा।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई होप लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा क्योंकि यहां हमने पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, ये किस तरीके का क्षेत्र है, अगर आप यहां आते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेकर जा सकते हैं, अपने भविष्य को किस तरीके से संवार सकते हैं, ये सारी बातें हुई लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CEO श्री कुलदीप शर्मा जी से। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर, और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलेगा, और इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कहीं पर भी सुन पाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: बहुत बहुत नमस्कार।

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
0: केवल माँ का दूध
1: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
0: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
1: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं, 27 तारीख है यानी कि बृहस्पतिवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज की तरह यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे गगन के साथ। क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हाय हाय, लवली।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भारतीय संस्कृति में एक अच्छी बात कही जाती है। वैसे देखा जाए तो हर बात एक अच्छी है। कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ओम शांति ही शांति ही शांति। ईश्वर से, पिता परमेश्वर से हम यही कामना करते हैं कि चारों तरफ सुकून हो, अमन हो, शांति ही शांति हो। लेकिन जब कहीं किसी का दिल दुखता है, पड़ोस में कोई तकलीफ आती है, तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर फर्क पड़ता है और हम हमेशा तैयार रहते हैं अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए। जी हाँ, नेपाल में जो आपदा आई है, जो सैलाब आया है, जो एक लबालब सैलाब आया है जिसकी वजह से जिंदगियां बह गई हैं, घर तबाह हो गए, ऐसी विषम परिस्थिति में भारत उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं जो घायल व्यक्ति हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और जो अपने बिछड़ गए हैं उनका जल्दी पता मिले। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सच बात तो है कि जिंदगी चलती रहती है, चलते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों को अलर्ट करें। जब आप ऑन रोड चल रहे हैं तो अगर सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं तो शासन प्रशासन का सबसे पहले काम है कि वो ढक्कन कवर करें। अक्सर हमने लोगों को ये भी देखा है कि जहां ढक्कन खुले हुए होते हैं वहां पर एक मार्क लगा देते हैं, कोई चिन्ह लगा देते हैं, जिसकी वजह से आवाजाही जब होती है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि यहां एक गड्ढा है या सीवर का ढक्कन खुला है, जिसकी वजह से वो बचकर निकलने का प्रयास करते हैं, है ना। और बरसात के मौसम में पोल में करंट उतरता है, तो ऐसे समय में पोल से दूर रखिए अपने आप को। और आज का जो मौसम है 27 अगस्त का, यानी कि ग्रेटर नोएडा में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है और दोपहर के समय कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उमस और हवा भी बनी रहेगी और बारिश की जो संभावना है 12:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच में हल्की बारिश यानी कि लाइट रेन होने की सबसे ज्यादा संभावना है। सो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, त्योहार का समय इसके बारे में जानेंगे जरूर, ट्रैफिक की अपडेट भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:17 हो चुके हैं, 27 तारीख है यानी कि थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और जाहिर सी बात है कि कल है 28 तारीख और रक्षाबंधन का दिन। मैं समझता हूँ कि लोगों ने पहले से ही छुट्टियां लेनी शुरू कर दी क्योंकि कल का एक अवकाश था, आज का दिन वर्किंग डे है, कल छुट्टी है, और हो सकता है कि सैटरडे को आप अपनी रिक्वेस्ट डाल ही दें कि बॉस परसों यानी कि सैटरडे वाले दिन छुट्टी चाहिए, और हो सकता है कि आपको छुट्टी मिल भी जाए क्योंकि आपने बहुत सारी छुट्टियां ELCL BL ये सब कमा के आप रखे हुए बैंक में। और मुझे लगता है कि अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। दिक्कतें परेशानी उन लोगों के साथ होती हैं जो हमेशा अपने संस्थान को दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। खैर, कहने का मतलब ये कि त्यौहार अच्छी तरीके से मनाएगा और अपनी फैमिली का जिस तरीके से हम सम्मान चाहते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अलर्ट कर दूं कि वैसी रिस्पेक्ट हम समाज को दें, सोसाइटी को दें, नेचर को भी एक राखी बांधिएगा, अपने जिन जो पैट हैं उनसे भी आप जब प्यार करते हैं उनको भी उनका भी ख्याल रखिएगा। और जो मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि जैसे हम अपनी सिस्टर का ख्याल रखते हैं वैसे समाज का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पर महामाया से जब आप इधर आते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानी हो जाती हैं। परिचौक पर भी थोड़ा ट्रैफिक स्लो रहता है और कालिंदी कुंज पर तो दिक्कतें परेशानी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आप जो आपकी लेन है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन सच बात यह भी है कि शारदा अस्पताल के आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। अननेसेसरी अनावश्यक तौर पर आप डबल लेन ना बनाएं, जो लेन आपकी जाने की है उसी को फॉलो करें, आने वाली लेन को भी रास्ता दें, एम्बुलेंस को रास्ता दें ताकि आप सुरक्षित घर पहुंचें, सुरक्षित ऑफिस पहुंचें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ज़ेनसी ब्यूटीफुल ट्रैक, हंसी तो फंसी फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। चिन्मय की आवाज, शेखर रवजियानी की आवाज सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। ज़ेनसी

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशाता 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:26 हो चुके हैं, 27 तारीख है और कल है फाइनली रक्षाबंधन, जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले आज हमें इंतजार है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष में। आज 27 अगस्त 2026 को देश भर में एक बड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है खेलो इंडिया संवाद, यानी कि खेलो इंडिया डायलॉग, खेल की बात प्रधानमंत्री जी के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए जो प्रोग्राम होगा शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में होने जा रहा है, यानी कि वर्चुअली प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको सुनेंगे। धन्वंतरी ऑडिटोरियम SMSR बिल्डिंग की जो 5th फ्लोर है वहां पर ये प्रोग्राम होगा और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं और उभरते खिलाड़ियों से सीधे संवाद करने का एक मौका मिल रहा है। और सच बात तो ये कि खेलो इंडिया के तहत हम देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हमारी झोली में आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर युवा खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हम निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहते हैं तो मैं समझता हूँ स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खान पान होती है, अच्छी सोच होती है और नियमित अभ्यास होता है, यानी कि नियमित प्रैक्टिस, जिसे आप प्रैक्टिस कहते हैं ना कि अभ्यास हर रोज करेंगे तो उसका जो फर्क है, जो आपकी पर्सनैलिटी में नजर आएगा, आपका गेम सुधार होता चला जाएगा गेम में दिन ब दिन। तो खैर कुल मिलाकर इस प्रोग्राम को जरूर सुनेगा और हम भी वहाँ उपस्थित होंगे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑलवेज सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। Good morning.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:37 हो चुके हैं। अगर आप अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखेंगे तो खांसी की शिकायत हो सकती है आपको और दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ, मसलन जैसे एसी बंद रखोगे, हमारे रूम में अगर कोई गेस्ट आएगा वो कहेगा एसी बंद है, तो हम उनको बता देंगे कि हमें सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत हो रही है। तो खैर, कुल मिलाकर ठंडे पानी से अपने आप को बचा कर रखिए, अच्छा खाइए, बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए और कल है रक्षाबंधन तो धूमधाम से घेवर खाइए। नहीं, घेवर कंट्रोल में थोड़ा खाइए। खान पान का बड़ा फर्क पड़ता है ना। अब क्या फर्क पड़ने जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हर पहले महीने की तारीख पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे सुनने में आ रहा है कि अगस्त का महीना एक जब शुरुआत रही थी तो उसके बाद सिलेंडर में कुछ इजाफा देखने को मिला था। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि 1 सितंबर से भी कुछ चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। गैस सिलेंडर की अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर EKYC अगर आपने नहीं कराया तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको समय रहते हुए करा लीजिए क्योंकि 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई। यानी कि अगर आप ये करा लेते हैं वक्त रहते हुए तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। दूसरी बात, तीसरा बदलाव सुनने में आ रहा है कि ATF, CNG, PNG की कीमतें भी कुछ बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं। ये सब 1 तारीख को पता चलेगा, इसलिए मैं सब पहले से ही आपको बता रहा हूं कि क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कारें महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, 4th बदलाव ये है। और 5th बदलाव ये है कि एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ एक नियम है, यानी कि थोड़ा रूल चेंज हुआ है। यानी कि अगर आप विदेश यात्रा से जुड़ा एक बदलाव है जो कि मैं आपको बताना चाहता ये हूं कि भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर अब बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगवाने यानी कि मोहर लगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। और यात्रियों को इस रूल चेंज से हवाई यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। और देख, छोटे से ब्रेक का सो डाउन को एनीवेयर।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:46 हो चुके हैं, 27 तारीख है हमारे आसपास, और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। बात करते हैं फूल की, फ्लावर की। अगर आपको बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं, फूल आपको सुकून देते हैं, खुशबू को आप सूंघते हैं ना अच्छा लगता है, उसको आप महसूस करते हैं, है ना, और यही खुशबू एक मधु शहद के माध्यम से जब हमारे बीच में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाग बगीचों को देखना चाहते हैं, फूल को देखना चाहते हैं और इन सब का आनंद उठाना चाहते हैं तो अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन का जो फेमस उद्यान है अमृत उद्यान, यानी कि 27 अगस्त को आज खुला हुआ है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, 27 अगस्त ही नहीं, सिर्फ 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ये खोल दिया गया है। और जहाँ लोग गर्मियों के मॉनसून के खूबसूरत जो दुर्लभ फूल है आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और समय जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 5 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाता है। और साप्ताहिक जो अवकाश है वो रहता है सोमवार को, मेंटेनेंस की वजह से ये क्लोज रहता है। और सभी जो आगंतुक हैं, जो गेस्ट हैं, राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 यानी कि नॉर्थ एवेन्यू रोड से ही प्रवेश और निकासी मिलता है। टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। और इसके अलावा ऑनलाइन अपना जो स्लॉट है वो आप बुक करना आपका बहुत अनिवार्य है। और अपना फ्री डिजिटल पास भी आप बुक कर सकते हैं और मेट्रो के जरिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको विजिट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए, समझ पाए फूलों को। क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक, गहरा हुआ। सच बात तो ये कि प्यार और गहरा होता चला जाता है जहां प्यार है, खुशियां हैं, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
6: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू।
7: उठो।
8: अरे बीबी जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

0: फिट हो जाओ। इंजर पिंजर ठीक करो फिर से हिट हो जाओ।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। इट्स अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पार्ट ऑफ अ शारदा यूनिवर्सिटी, पार्ट ऑफ अ SSMFE यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के माहौल को देखते हैं, यही के होकर रह जाते हैं। और यही बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक गेट टूगेदर प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है ओरिएंटेशन दीक्षारंभ 2026। और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो जब माहौल को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, गढ़ते हैं, मतलब कितने अपने दिमाग में वो छाप लेकर जाते हैं कि खुशनुमा माहौल है, तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे, उनके दोस्तों के भी बच्चे यहाँ पर होते हैं। तो इस माहौल में, खुशनुमा माहौल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस कैंपस के बारे में और अच्छी तरीके से जानिए, प्लेसमेंट के बारे में जानिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और एक्टिविटीज़ को देखिए। साथ ही साथ पैरेलल बहुत कुछ चल रहा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बातें हों, चाहे वो खेल संवाद की बात हो, जैसे कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टूडेंट्स के साथ खेल संवाद होने जा रहा है धन्वंतरी ऑडिटोरियम में, 5th फ्लोर SMSR बिल्डिंग में, सुबह 11 बजे मैं वहां पर पहुंचने वाला हूं। आई होप आप भी वहां मुझे मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी बाइट यानी कि ऑडियो बाइट लेंगे, एक छोटा सा संदेश लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और कुल मिलाकर ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा कि आपकी जो हेल्थ है वो हमेशा तंदुरुस्त रहे। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाना, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरे होश और आवाज में चलाएगा, है ना? कहीं ना कहीं कोई आपका इंतजार कर रहा है। Someone is waiting for you. Good morning.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है वो निरोगी काया रहे, हम हेल्दी रहें, यही हम सबकी कामना है। ओम शांति शांति। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से। एक खास प्रोग्राम हम लेकर आते हैं रेडियो ओपीडी, जिसके अंतर्गत हेल्थ की बातें होती हैं। जो हमने सुना है वही हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहां सारी मुश्किलें आसान है, यानी कि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जब आप रुपया कमाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास वो रुपया किसी काम आता है। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वही रुपया आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन आपके पास आपका स्वास्थ्य है तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के दौलतमंद हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ही कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। भागती दौड़ती जिंदगी में, कानून के पछड़े में, सच बात तो यह है कि कहा जाता है सर रियलिटी कि कई लोगों से बचिए, जैसे कि पुलिस से बचिए, कोर्ट से बचिए, डॉक्टर से बचकर रखिए, है ना। क्योंकि समय खर्च होता है, रुपया खर्च होता है, और हम भी ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो। हम ये चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें। अगर कहीं कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो डॉक्टर की राय लीजिए, वकील की राय लीजिए, या किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। वकील का जब मैंने जिक्र कर दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। बहुत अच्छे आप इंसान हैं, लोगों की मदद करती हैं, और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। और आप हैं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं, जो इनका एरिया है, आपका एरिया है क्रिमिनल और प्लस मैट्रिमोनियल। आप एडवोकेट हैं, आप हैं सरिता नागर। मैम सुनो शारदा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। सुनो शारदा के माध्यम से पिछले साल भी हमने लीगल से जुड़ी हुई तमाम बातें की थी, और उसी परिवार का हिस्सा खुद को मानते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस मंच पर दोबारा बुलाया जाए और हम और बहुत सारी ऐसी बातें करें जो कि अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाए भी, और कहीं ना कहीं ये मंच खुला रहे उन सभी लोगों के लिए जिनके दिमाग में ना जाने कितने ही सवाल हैं, और वो एरिया से ना बंधे, वो लीगल की बात करें, वो हेल्थ की बातें करें, वो आपके माध्यम से हर तरह के सवाल उठाएं और हम लोग उनका जवाब दें। नो डाउट आप शब्दों के जादूगर हैं, और आपसे जुड़ना अपने आप में खुशकिस्मती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये जो आपका प्यार है, सम्मान है रेडियो के प्रति, आपके लिए दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने हमें समय दिया। और स्वामी विवेकानंद खुद ही कहते हैं कि अगर आप हमसे न जुड़ते तो हम आपका धन्यवाद कैसे कर पाते। अदरवाइज तो देखा जाए बहुत सारे माध्यम है आपके पास जहां जाकर आप अपनी बात रख सकते थे। थैंक यू सो मच मैम। सो लिसनर्स, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा म्यूजिक और ब्रेक लेते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल हेल्थ। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानकारी एक डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन अगर आप भी कुछ जानते हैं या मैं भी कुछ जानता हूं या एक वकील भी अगर जानता है तो उसके बारे में बता सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर रह सकता है या मानसिक स्वास्थ्य कब कब खराब हो जाता है जब आप कानून की लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक अवसाद होता है, एक टेंशन होती है, क्योंकि समय लगता है, रुपया खर्च होता है और कभी कभी तो एक जो आस्था है कानून के प्रति जब वो टूटती है तो निश्चित तौर पर जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। जी हाँ, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि सही कहते हैं डॉक्टर्स और जानकार कि सेहत से ही तो लाभ गई। तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता नागर मैम, जो कि एक एडवोकेट हैं, मैट्रिमोनियल और क्रिमिनल आपका एरिया है जिसमें आप जो महारत हासिल है, ये जो आपका एरिया जिसमें आप प्रैक्टिस करती हैं। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आजकल सोसाइटी में बहुत तरह की बातें हो रही हैं और कहा जाए तो नो डाउट ये एरिया साइकोलॉजिस्ट लोगों का है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जो लिटिगेशंस हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य कहाँ पर सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं,
0: जी
1: किन परिस्थितियों में इंसान एंजाइटी डिप्रेशन में पहुंच जाता है, वो है किसी भी स्टेट माइंड का जो स्टेट है वो कांस्टेंट रूप एक ही तरीके से बना रहे। यानी कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो कुछ छोटे समय के लिए हैं तो वो नॉर्मल है, वो स्ट्रेस है आपका, लेकिन वही अगर आपके दिमाग पर कब्जा कर लें, यानी कि लगातार वही बने रहे वही थॉट्स, तो वो आपको आगे एक सीवियर डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे। अब सबसे ज्यादा आप ये देखिए परिस्थिति कितनी दुखद है ये कि अदालतों में जो अपने हैं, और फिर वही बात है कि अगर अपने हैं तो फिर सामने क्यों हैं। बड़ी विडंबना है कि अपनों से ही अपनों के लड़ाइयां, युद्ध, मनमुटाव,
0: जी महाभारत होता है, ये कह सकते हैं अपनों से ही होता है।
1: अपनों से ही होता है। सबसे ज्यादा लिटिगेशंस हमारी अदालतें भरी पड़ी हैं फाइलों से, तो आप ये समझिए कि वो याची, वो पक्ष और विपक्ष सालों साल जिस कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ और कहाँ तक आप देखें कि कितनी खराब हो चुकी होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ पर बात की जाए। मेंटल हेल्थ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो लड़ सके। लड़ना अपनों से ही है, लेकिन अपनी स्वस्थ मेंटल हेल्थ के साथ में।
0: जी बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं कि लड़ना अपनों से ही है, और सच बात तो है कि कभी कभी जब अपने सामने आ जाते हैं, अपनों के खिलाफ केस दायर कर देते हैं, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, भाग दौड़ होती है, समय खर्च होता है, रुपया खर्च होता है, और कभी कभी कानून की जो लंबी प्रक्रिया है उससे गुजरते गुजरते इंसान तक गुजर जाता है, तो निश्चित तौर पर जो आपकी मानसिक हेल्थ है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी संबंध में दोनों बातों को साथ लेकर मुझे लगता है कि डॉक्टर तो अपनी बात रखते ही रखते, लेकिन कानून के जानकार भी अगर हमसे जुड़ रहे हैं और इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमने देखा है कि वकीलों ने देखा है कि ये स्वास्थ्य खराब होता है और जिसकी वजह से एक विश्वास तो टूटता ही टूटता है, लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है और कभी कभी जिंदगी से वो व्यक्ति चला जाता है, तो किस तरीके से इस कानूनी प्रक्रिया से अपने आप को बचा कर रखें, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाकर रखें, और इससे कौन कौन गुजरता है, कौन कौन प्रभावित होता है, कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। आप हैं सरिता नागर, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं, क्रिमिनल प्लस मैट्रिमोनियल आपका एरिया जिसमें आप प्रैक्टिस करती हैं, और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर से आप आती हैं, तो इसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सेहत सही लाभ गई बहुत एक अच्छा विषय जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हो रही है। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और इसके संबंध में बात करने के लिए हम सब जानते हैं कि डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन जब कोई जानकार हमारे साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है कि एक सार तो वो हमारे सामने रख ही सकता है, एक अपना अनुभव साझा कर ही सकता है। ऐसे ही अनुभवों को साझा करने के लिए हमने एक आज वकील को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। वकील साहिबा कहें दरअसल, और सरिता नागर मैम है, मैट्रिमोनियल प्लस क्रिमिनल केसेस आप देखती हैं और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप

0: अब आप समझिए कि जिस बच्चे ने जन्म के साथ माँ बाप एक संयुक्त शब्द समझा, बोलना सीखा, अब आज उसको उनमें से एक का चुनाव करना है। यही चीजें धीरे धीरे समाज में वो बिगड़ता बचपन, बिगड़ते यौवन की पहली नींव बन जाता है। आज जो हम इतना एग्रेशन बच्चों में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टूटते बिखरते परिवारों, वो पेन और सफरिंग है जो उन्होंने तमाम अपने बचपन में झेली है माँ बाप के साथ, और तमाम तरह के लिटिगेशनों में किसी ना किसी रूप से वो सीधे अगर नहीं भी जुड़े हैं और उनके परिवार जन उसमें अगर लिप्त हो गए हैं किसी भी कारण से डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का गया, यानी कि आने वाले जो भी हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा यूथ है, वो गया हमारा हाथ से। और जब यूथ ही कमजोर है तो फिर राष्ट्र की तो क्या ही बात करें।
1: क्या बात, बहुत खूब आपने बात कही, और आपने एक अपनी वो बात रखी है जब आप उस दौर से गुजरती हैं और जब वो इस तरीके के याची आते हैं, याचिकाकर्ता आते हैं, जहाँ बात होती है एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरते हैं, यानी कि उनकी हेल्थ भी प्रभावित होती है। और आपने जो बात की, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, अपने आप को आगे लेकर जा रहा है, अपने सपनों को पाल रहा है, माँ बाप की जरूरत है, सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती है, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। हो सकता है कि वो एक महिला से नफरत करेगा आगे चल के, हो सकता है कि एक पुरुष से नफरत करेगा, हो सकता है कि एक जज से नफरत करेगा, हो सकता है कि वकील या वकील साहिबा से नफरत करेगा। तो हम क्या दे रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आपने मैम बहुत सही बात कही कि एक बच्चे को अगर हम अच्छी परवरिश देंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे चलकर देश में योगदान देगा। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। इसके लिए नैतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो मूल्यों की बातें, वो संस्कारों की बातें जो हमें घर से सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, और जब हम इन बातों के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिक और ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरुश्रुता 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ सेहत सही लाभ गई। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल हेल्थ। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर आप दुआओं में कुछ मांगना चाहते हैं, यकीन मानिए कि मैं तो यही मांगता हूं कि हे मालिक पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है वो निरोगी काया बनाकर रखना। और यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं अगर आप निरोग हैं। कल्पना करिए कि आपने बहुत सारा रुपया कमा लिया और वही रुपया आपकी हेल्थ को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च हो रहा है, तो हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। वो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, घर बिखर जाता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को लेकर एक अदालत में जाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आप सरिता नागर जी हैं और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपनी प्रैक्टिस देती हैं और जो आपका एरिया है क्रिमिनल प्लस मैट्रिमोनियल। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि जब इस तरीके परिवारों को आप देखती हैं तो बच्चों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जो डिटेल में आपने बात बताई कि आप चाहती हैं कि हमारा भारत एक युवा देश है, वो बच्चा अपने आगे चलकर देश में योगदान दे, लेकिन जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो वो नो डाउट कि दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वकीलों को कितना आप जिम्मेदार मानती हैं जब केसेस लंबे खींचते हैं?
1: जी गगन जी, एक चीज एंजाइटी डिप्रेशन मानसिक तनाव की बहुत कहें कि इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये वकीलों को भी नहीं छोड़ता है। हम भी मानसिक दबाव में रहते हैं, हमारी भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं बहुत तरह के दबावों को झेलते हुए, मगर कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। हम उनके एडवोकेट होते हैं, हम उनके थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं, हम उनकी होप भी बनते हैं।
0: क्या बात?
1: और लंबी चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसका एक हिस्सा तो है ही, जबकि उसकी नींव में बहुत सारी चीजें हैं कि वो प्रक्रियाएं क्यों लंबी होती हैं, अदालतों में क्यों पेंडिंग केसेस पड़े हैं, उन तमाम तरह की चीजों को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य हमारा बहुत जरूरी है कि वो दुरुस्त रहे, हमारी सेहत, हमारा मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि हम अपने क्लाइंट्स का, अपने याची को न्याय दिलाएं उसके उसके मेंटल पीस के साथ, मेंटल हेल्थ उसकी मेंटेन रह पाए तब तक। तो नो डाउट हम सभी लोगों के लिए सेहत का सबसे स्ट्रॉन्ग ये कहा जाए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, या अब तो शायद ऊपर ही मानी जाए ये मेंटल हेल्थ, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो फिट रहे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप पैरालंपिक प्लेयर्स को देखिए, जहां पूरा योगदान आपकी मानसिक शक्ति को ही रहता है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इच्छा शक्ति को रहता है, मानसिक शक्ति को रहता है, और यही वजह कि कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और निश्चित तौर पर जब आप ठान लेते हैं कि कितनी भी दिक्कतें परेशानियां आ जाएं, अगर कोई कोर्ट केस चल भी रहा है तो मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपना मनोबल बनाकर रखना है, अपने बच्चों को खुशियां देकर रखनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो निश्चित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य खराब होता ही होता है। ईश्वर से यह भी प्रार्थना करिए कि कभी इस तरीके के चक्कर ना लगाने पड़े। अगर लगाने पड़ते हैं तो न्याय की उम्मीद है ही, क्योंकि न्याय प्रक्रिया है और न्याय होता भी है। थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन एक समय जब न्याय मिलता है तो वो सारी हरारत, सारा जो तनाव है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें हैं और उसके बारे में हम जरूर जानेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। मैम, कोई अगर आपके दिल के आसपास कोई एक खूबसूरत गाना जो आप सुनना चाहती हों, जब आपके आसपास स्ट्रेस रहता है, जब आप मानसिक तनाव से गुजरती हैं, तो कोई गाना जो आप अपने लिसनर्स को, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हों?
1: जी गगन जी, बिल्कुल। अपनी मानसिक स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सारी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े रहें। गाने हो, कविताएं हो, किताबें हो, पोएट्री हो, और मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, पोएट्री का बहुत शौक है, और सामने अगर कोई बहुत सुंदर पंक्तियां मिल जाएं किसी की तो वो दिमाग में देर तक ठहर जाती हैं। और गानों में कहें तो लता मंगेशकर की मैं फैन हूँ, उनके आप कोई भी गाने अगर चलाते हैं तो मेरे सारे फेवरेट होंगे वो।
0: क्या बात है, क्या बात है, लता जी साक्षात माँ शारदी की मूर्त है, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जब ऐसे बच्चे जिस घर में जन्म लेते हैं तो आप बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि आप दुनिया के दौलतमंद आदमी आप ही हैं। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, वॉल्यूम सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ।

0: आप कहानी सुनाओगी?
1: जरूर सुनाऊंगी। इधर आओ, बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
0: तोते और बंदर की।
1: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सेहत सही लाभ कई, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जाहिर सी बात है, बार बार मैं इशारा कर रहा हूँ कि एक एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आसपास आपके ये मानसिक तनाव है तो आप भी इसके बारे में मालूमात रखते हैं, लेकिन अच्छी बात है अनुभव के आधार पर तो आप भी साझा कर सकते हैं। ऐसे ही अनुभव से जब वकील गुजरते हैं तो वो बेसिक जानकारी तो रखते ही हैं, किस वजह से एक याचिका जो याचिका करता है उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, क्या किया जाए जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे। आप कहती हैं कि कुछ क्रिएटिव होते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये पहले तो जो काम चल रहे हैं वो चलते ही है, लेकिन उसके बाद आप बुक पढ़ सकते हैं, शेर व शायरी को अगर आपका शौक है वो आप करिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए और अपने आप को आपको ही तनाव मुक्त रखना होगा। ये सारी बातें कर रही हैं हमारे साथ हैं सरिता नागर मैम, जो कि पेशे से वकील हैं और मैट्रिमोनियल प्लस आपका क्रिमिनल का जो एरिया है उसमें आप प्रैक्टिस करती हैं, सूरजपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वहां पर प्रैक्टिस करती हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम मैट्रिमोनियल केसेस में डील करते हैं, अधिकतर ये देखा ही जाता है कि महिला ही पीड़ित रहती है और बच्चों की जिम्मेदारियां माँ पर ही आ जाती है। जब माँ एक घर का, एक गृहस्थी का, एक परिवार का जो बेस है उसको आर्थिक, सामाजिक, कानूनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और स्वाभाविक ही है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही उस दौरान। यदि खुशहाल माँ नहीं है तो खुशहाल घर नहीं है, खुशहाल बच्चे नहीं है। बहुत जरूरी है कि घर की माँ, घर की महिला वो खुश रहे। खुशी का मतलब संसाधनों से नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। उसको मालूम है कि मेरी इंटेंशन अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर है, मोटिवेटेड रहे इस बात को लेकर कि मिलेगा, न्याय मिलेगा, उचित जो भी चीजें हैं उसको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को एक दूसरा मौका देने के लिए वो होप जो है वो उसकी बनी रहे, उसके लिए वो बात जरूर करे, चीजों को शेयर जरूर करे। पहले के टाइम में ये चीजें परिवार में, घर के सदस्यों में, मित्रों में, बहुत बहुत जगहों पर हुआ करती थी। आजकल कहीं ना कहीं आज के दौर में हम सब अंदर की तरफ हैं, भीतर की तरफ तो हैं लेकिन भीतर की ओर पूरे नहीं हैं, यानी कि हम गुमसुम हैं लेकिन भीतर की ओर नहीं हैं। तो गुमसुम होते जा रहे हैं और जिसका असर फिर सीधा अस्पतालों की लंबी लाइनें और बढ़ते अस्पतालों की संख्याएं बता रही हैं कि हम कुंठित हैं, हम अपने मन में बहुत कुछ दबाए हुए हैं। तो जरूरी है कि इस पर
0: मन की बातें साझा कर दें, एक अच्छे दोस्त को आप तलाशें जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त रख पाएंगे, तनाव से दूर रह पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी मन की बात में ये बातें कह चुके हैं और अक्सर हमने सुना है कि मन की बात यानी कि जब आप साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो दोस्तों आप भी हमसे अपनी मन की बातें साझा कर सकते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और कहते ये भी है कि जब वकील के पास आप हैं तो वकील से भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि केस जीतने के चांसेस वही हो जाते हैं जब आप सब कुछ बता देते हैं अपने वकील को। वकील आपके साथ जब जुड़ता है तो निश्चित तौर पर वो एक लंबे अरसे से जुड़ा होता है, तो वो आपका दोस्त भी बन जाता है, तभी वो आपसे कह पाता है कि आप खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जिस तरीके से मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक वाकया हमें बता रही थी, ऑफ एयर हमसे बात हो रही थी कि ऐसी उसकी जिंदगी में आप शामिल हो गए, वो आपकी जिंदगी में शामिल हो गई, दुआओं का, शुभकामनाओं का दौर रहता है, उसकी मानसिक स्थिति को तंदुरुस्त बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज हेल्दी वो है और उनका केस जरूर चल रहा है लेकिन बहुत जल्द न्याय उनको मिलेगा। तो वो जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में प्लीज आप मुझे बताइए।
1: जी गगन जी, ऐसा मैट्रिमोनियल के ही अंतर्गत एक्चुअली देखा जाता है, या मेरे सामने एक इस तरह का केस भी रहा जिसमें महिला के साथ बड़ा धोखा हुआ और पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया और वो अपनी दो अबोध बालिकाओं के साथ में इस संसार में कहें तो उसको अकेला छोड़ दिया गया और उसकी एक बहुत पेनफुल सफरिंग रही लाइफ में। अब समय लगा, नो डाउट समय लगा, लंबा समय गुजरा उन सारी चीजों को लेकर, लेकिन वो इतनी सेल्फ मोटिवेटेड रही खुद से कि उसे मालूम था कि मुझे अपने लिए तो चाहे मैं एक कदम पीछे हट जाती, उन्हें माफ कर देती, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों के कारण इस लड़ाई को अंत तक ले जाऊंगी, न्याय पाकर ही रहूंगी। उस दौरान न्याय प्रक्रिया तो जिस अनुसार चलती है चलती ही रही, लेकिन बातों से बहुत सारे उसको सुझाए गए कि आप स्पिरिचुअल देखें, रिलीजियस बने रहें, आप अपने अंदर अपने इस मन को थाम के रखें, बस इस मन को मजबूत रखें कि आपकी जो एक युद्ध लड़ रहे हैं आप, अपनों से ही जो लड़ाई चल रही है आपकी, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और उसमें नो डाउट कि हम लोगों का एज अ प्रोफेशनल हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम उन्हें मोटिवेटेड उस तरीके से रखें, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें हमें पता होती हैं हमें, और वो होप बनाए रखनी होती है, हम ही उनकी होप होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी मोटिवेटेड रहें, हम भी पॉजिटिव रहें, तभी तो हम पॉजिटिविटी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे।
0: तो, सही बात है। और ये जो दौर है यूं ही चलता रहे दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे, देश हमारा हेल्दी रहेगा, तभी हम कुछ काम अच्छा कर पाएंगे अपने लिए, अपने देश के लिए। और देश में युवाओं की बहुत जरूरत है, और युवाओं का खुद का फर्ज बनता है कि वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो बन पड़े वो आप करें। जब आप अपने आइडियल को देखते हैं, जब आप अपने हीरो को देखते हैं, अक्षय कुमार या ऐसे कई और लोगों को जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए ऑन ग्राउंड जाते हैं, वो आपको सजेस्ट भी करते हैं कि भाई ये जो सप्लीमेंट, ये जो प्रोटीन बड़े बड़े डब्बे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। लेकिन आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए शाकाहारी रहिए या योग करिए, टाइम से उठिए, टाइम से सोना, ये छोटी छोटी चीज़ें जिस वजह से मानसिक तनाव से आप अपने आप को बचाकर रख पाएंगे। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए सेहत सही लाभ का ये विशेष कार्यक्रम मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जब समुदाय का हम जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें इस रेडियो स्टेशन से हम आप तक पहुंचा रहे होते। एक विषय को आप लेकर आई, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता नागर मैम, जो कि मैट्रिमोनियल प्लस क्रिमिनल का एरिया आप देखती हैं क्योंकि आप पेशे से वकील हैं। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं और मैम ने ये भी बताया कि अपनी मन की बातें आप शेयर करें, गाने को सुनें, कुछ क्रिएटिव करें। और चूंकि याचिकाकर्ताओं से जब मिलती हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को देखते हैं, खासकर महिलाओं से जब आपका वाबस्ता रहता है, उनसे जुड़ाव रहता है, वो सारी बातें आपने हम तक पहुंचाई, तो मैम दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पर जो इस दौर से गुजरते हैं या गुजरती हैं अपने आप को बेहतर बनाकर रख पाएंगी, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है, ये अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, टेंशन आती हैं, लेकिन जो आपने ज्ञान दिया है, जो नॉलेज शेयर की है, वाकई बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू मैम,
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी मुझे इस मंच पर दोबारा ये मौका देने के लिए कि हम अपनी बातों से, अपने विचारों से सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैला सकें। और नो डाउट आप अपने इस बात पर चलते रहें और हर रात की एक सुबह जरूर है।
0: क्या बात है, क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, देख भाई देख, उसमें ये गाने की लाइनें आती हैं, हर शाम के बाद सवेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख। और मैम ने यही कहा कि हर शाम के बाद सवेरा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और आप मेलजोल बढ़ाने के लिए फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पर भी अपने मन की बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
2: 90.8 एफएम।
3: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: व्हाट इज दिस शिट? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेम, इट रियली हर्ट्स। एनीवे,

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका मुख्य घटक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को उसकी नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलता है और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, विशेषकर आर्थिक व्यवधानों के समय में। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी कलाकार हैं कोश

0: किसान मित्र, अभी आप कोशिंदर खदाना से ये रागनी सुन रहे थे और किस्सा था हीर रांचे का। किसान मित्रों, खेती किसानी में आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं और इन तकनीकों का सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हमारे किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता। तो किसान मित्रों, आप भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बेमौसम की फसलों को उगा करके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कृषि में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।
1: ए रे

0: बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
1: जतन कर ले।
0: अगर जीवन में अच्छा कार्य किया होगा तो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। लेकिन जानते सबे बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान आप किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से आपको बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के बैंक में जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर आपकी फसल का बीमा हो जाता है। अगर किसी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपकी फसल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई यानी कि आपको वित्तीय सहायता दी जा सके। तो किसान भाइयों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से एक रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: शासन
1: जीत जाता श्री।
0: ये मक्का या बाजरा रखाने वाला आदमी है, ये शोर मचाएगा। मैं खूंटा ठोकने वाला आदमी हूँ, तुम अपना काम करो जो हमने आदेश।

0: आत्मा विदुर के गले पर छुरा क्यों नहीं चलाते?
1: नहीं दुशासन, ये सती वीर पतिव्रता
0: जिभ्या करो, जिभ्या

ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
3: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
2: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
3: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं, अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं मिश्रण फायदेमंद हो सकता है साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

साथियों, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने ये दान तो सपने में ही दे दिया था और सारा हाल मंत्री को बताया था। मेहरबानों, सवेरा होते ही विश्वामित्र क्यों ना दरबार में टपके। तो मेहरबानों, सारा राज काज 3 वचनों में ले लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र 60 भार का कर्ज उतारने के लिए खजाने की ओर बढ़े, कह दिया ओ हरिश्चंद्र बाहर चले आओ, तुम्हारा खजाने पर कोई अधिकार नहीं, तुम वचनहार हो चुके। मेरे मेहरबानों, वचनहार नहीं हो सकते थे हरिश्चंद्र, बाहर निकल गए। और आज हरिश्चंद्र तारावती पुत्र रोहतास तीनों प्राणी नमस्कार करते हुए जन्मभूमि को और माफी

0: 2018 में यहाँ पे JEE-AES के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
1: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
0: आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
2: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
3: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
0: कोविड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE-AES रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
1: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE-AES केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ ये।
0: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
2: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।